0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4। साई साई

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

ਪੀਆ ਨੱਥੀ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਠੀ ਆ ਉਸਤੇ ਅਸਗਰ।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए जीए एफ एम

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

5 एमएम फॉर्म में जीरो पहुंची पो अमरीकी नायब सदर जेडी विंस भी स्विट्जरलैंड रवानो वजीर आजम शहबाज शरीफ आला सिता वफद संगर जीरो रवानो थी पो वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका टेक्निकल गाल में इसी नायब सदर जेडी विंस है तो ईरान से गाल बाबत मसला सुठे तरीके से हली रहा है अब नए हुरमत में तेल की सप्लाई जंग का अगवारी सिता से वापस अची वही है।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
2: जी हाँ बुड़ी 381 5 5 786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

कह रही है ये गुण की सदा के काढ़ लेती है खुद से जहां, काढ़ लेती है, काढ़ लेती है।

कि मौला सरकार 23 बरस 3 माह हुजरे में गोशा नशीन बैठे रहे। एक दिन बीवी सरकार के ये जुमला कलेजे को वो करता है, हर जितने भी हक परस्त हैं सच के रास्ते पे चलने वाले लोग, वो मेरा एक शेर कि जिनकी महफिल में मेरे मौला की बातें ना मिले उससे अच्छी मेरे मौला मेरी तन्हाई है। और इश्क हैदर में ये लाजिम है फना हो जाओ, इश्क हैदर में ये लाजिम है फना हो जाओ, इससे कम इश्क नहीं इश्क की रुसवाई है। इससे कम इश्क नहीं इश्क की रुसवाई है। अब यहां पर एक शेर पेश कर रहा हूं जरा सा आखिर में कि बीवी सरकार कहती है, ऐ अबुल हसन मुझसे अब आपकी ये हालत नहीं देखी जाती, इतना चुप रहते हैं आप, बताइए अबुल हसन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अब जिनके दिल दुखे हुए हैं माशरे से, अब जो जानते हैं कि हलाल क्या है हराम क्या है, जो जानते हैं कि हलाल के रास्ते पे चलने पे मसाइब क्या है, जो जानते हैं तन्हाई क्या है, वो इस मिसरे को समझेंगे। अरे अबुल हसन बीवी कहती है अबुल हसन बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो जवाब सुनेंगे मौला अली का, कहें फातिमा अब कूफे में मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता, कूफे में अब शेर सुनिएगा कैसा।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
5: हिसार नूर मेरी
6: याद है यहाँ बैठे थे और सच्चे भाई ने पढ़ा था

0: سنیے گا.
1: علی کے باب میں ہم سے
0: دوسرا مثال سنیے گا.
1: علی کے باب

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: लगो सही।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
3: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन में परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

ਸਪਈ ਤਚਾਚੋ ਪਾਣੀ ਵਰਣ ਵਿਓ।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

ईरान ऐं अमरीका विच में मुफ़ामती यादाश्त नामे ते ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो अॼु थी रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बशरकत लाइ स्विट्ज़रलैंड पहुची विया। ईरानी वफ़द स्पीकर बाकर कालिबा जी सरबराही में ज़ेवरेज पहुतल। अमरीकी नायब सदर जे डिवेंस में स्विट्ज़रलैंड रवानो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ वारा सिधा वफ़द संकट ज़ेवरेज रवानो थी वियो आहे। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जे तहरान में ईरान सदर मसूद पज़ेशियान सां मुलाक़ात। ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर समेत किथे सूरतहाल ऐं जंगबंदी मुआदे ते ॻाल्हियूं। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान जे सख़्त रद अमल बाद फ़ौज खे लबनान में कार्रवायूं रोकण जो हुकम ॾेई छॾियो। इसराइली मीडिया जो चवण आहे त नेतन्याहू बचाव वारे वज़ीर इसराइल कांड सां मशवरे बाद लबनान में हमला रोकण जो हुकम ॾिनो। ईरान पारां मुआदे तां हथ खणण ऐं अपना हुरमत ॿीहर बंदि करण ते वीगो गाॾी जी मोटरसाइकिल खे टकर लॻण सबबि औरतुनि ऐं ॿारनि समेत पंज ॼणा फौत। हादसे में सिकंदर जोगी फिदा हुसैन समेत ॿिया फौत थी विया। समूरनि फौतनि जा लाश गिम्स अस्पताल मुंतकिल कया विया। पुलिस मूजिबि वीगो गाॾी खे तहवील में वठी मालिकनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे।

शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जी 73 जनम ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दंग ॾिना, जुरत ॾिनी, क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खे जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमेद जी अलामत तौर यादि करे थी। करणो मोहम्मद खान में पुल न हुजण सबबि जनाज़ो सिमनाले मां गुज़ारियो वियो। वीडियो वायरल कोट हामिद चांडियो में फोती अमीर बख़्श चांवरी जनाज़ो कारो घुंगड़ो सिमनाले मां गुज़ारियो वियो। ॻोठाणो जो चवण आहे त इंतज़ामिया जी नाअहली लाइ हिकु पुल बि ठाराए न ॾिनी वई। ॻोठ में ॿिनि बुनियादी सहूलतुनि जी खोट सबबि ज़िंदगी अज़ाब बणियल आहे। ऐं मटियारी भरिसां नौजवान जो सिंधू दरिया मां लाश हथ कचे में काठियूं करण लवियल। हारा पुराणा वासी आयूब भटी बुरी फौत थी वियो। लाश घर पहुचण ते रोज़ ॾाढ़ो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लैण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: देखेंगे वो मंजर, कैसे देखेंगे वो मंजर पंजतन जब आएंगे, कैसे देखेंगे वो मंजर आएंगे। देखना उन मजलिसों में, देखना उन मजलिसों में हर शहीद आ जाएगा,
1: हर शहीद आ जाएगा।
0: देखना उन मजलिसों में हर शहीद आ जाएगा, फिर तो वो मातम करेंगे, आसमां हिल जाएगा।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई। हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हाँ बुड़ी 231 525 786।
2: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बरगन स्टाप पहुंची पिया आहिनि। ताज़ा तरीन फुटेजिस असीं अव्हांखे ॾेखारियूं पिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बरगन स्टाक पहुतल आहिनि। अमरीका ऐं ईरान तकनीकी मुज़ाकरात जे हवाले सां बरगन स्टाक पहुतल आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द सां गॾु स्विट्ज़रलैंड जो शहर स्टाक पहुतल आहिनि। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां गॾु मौजूद आहिनि। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल ईरान अमरीका गार्डन जे ॿिए दौर में शिरकत कंदा ऐं उते पहुतल आहिनि। ताज़ा तरीन फोटेज़ असीं अव्हांखे ॾेखारियूं पिया।

0: यारन लाइ स्टेविटकोप ए चेयर्ड कृष्णर अग खां स्विट्जरलैंड में मौजूद आन जिथे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ बर्गन स्टाक पहुतल आन जिथे ईरान अमरीका जंग के हवाले से मुजाकरात थी रहा आन वजीर आजम स्विट्जरलैंड पहुंच पो है आलसिता तकरीब में शिरकत करण लाइ वजीर आजम स्विट्जरलैंड के शहर स्टॉक पहुतल आन अवा के लाइव डेखारियों पाया वजीर आजम फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका गालन के बे दौर में शिरकत लाइ बर्गन स्टॉक पहुतल आन शॉर्ट ब्रेक ब्रेक का हाजिर थन्दा रहो केटीएन न्यूज
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायम आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578
3: जी हाँ बुड़ी 231 5 5 786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज
4: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
5: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
4: आवाज की डोर से बंधा हुआ
6: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
7: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GAFM 90.4

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

शहीद मोहतमा बेनदीर भुट्टो जी टेहतरी जन्म दिहाड़े के मौके से सदर आसिफ अली जरदारी तो शहीद बेनदीर भुट्टो औरतन सियासी शमूलियत के नव दग डा जुरत डनी क्यादत जहां नवा दरवाजा खोलिया नजरियो अज पाकिस्तान के मुस्तबिल ला रहनुमाई है कौम के जमूरियत खिदमत ए उम्मीद के अलामत तौर याद करे थी। बिलावल भुट्टो जरदारी तो शहीद मोहतरमा बेनदीर भुट्टो एक जमहूरी तरक्की पसंद चैन सुबह की जंजीर हुई मजबूत वफाक बाख्तियार मुल्क आइन की बालादस्ती शहीद बीबी जो नजरियो हो।

पीपीएम पीए नईम खरल कैंसर सबब कराची के निजी अस्पताल में लाराणो करे वो नईम खरल केतरे ही अरसे का जिगर ए कैंसर की बीमारी में मुबतला हो। नईम खरल पीपल्स पार्टी की टिकट तां पंज भेरा एमपीए चूंडियो पियो।

समारोह विचों शादी का इनकार ते नारी मंगेंदी अता कुआड़ी मणी कतल गोड गुलाम हुसैन कोसो में जवाबदार गुलाम रसूल कोसो पंज मंगेंदी इस असमा कोसो के कतल कर छो ला जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले वाक्य जो केस दाखिल।

0: अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM 90.4
1: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331257 86।
4: जी हाँ बुड़ी 331 55 786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4

0: 홀.
1: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6।
2: जी हा 2315525786
1: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो, उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो, पांजे नढड़े अदे अली असगर जो। उठी तरस तड़ियाई, उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो, पांजे नढड़े अदे अली असगर जो। उठी तरस तड़ियाई तुझे उठड़े अदां करे खैर धणी, ये दुआ थी घुरां पांजा हथड़ा खणी। तुझे उठड़े अदां करे खैर धणी, ये दुआ थी घुरां पांजा हथड़ा खणी। शल तोखे बिडे रब उम्र घणी, जोरो जल्द पहुंचाए जा दिल पर जो। ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो, ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो, पांजे नढड़े अदे अली असगर जो। ओठी तरस सजाए वन पहुंचते जाते वनणो थई, मुझी कैल सदा के मनणो थई। वन पहुंचते जाते

दग जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो पांच नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो ओठिया पुत्र अहवाल तदस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठिया

हर हर जो कोठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांज नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए।

तरस सजाए भगोनी गरजो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो पांजे नंढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए चिड़िया जाऊं जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार की रोन लगो लफ्ज बचड़िया जाऊं जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार की रोन लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो मां गुलाम हुसैन जे दर जो ओठी तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए कयों हेडा कशाला कन जे करे जग खलक्यो खुदा वंद जन जे करे कयों हेडा कशा

महेश रजो ओठी तरस सजाए वगोनी गरजो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए ओठी तरस सजाए वगोनी गरजो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिर्फ की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2311-2786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूवी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

इस्लामाबाद मफामती यादाश्त नामे ते बे मरहले ला गालियूं स्विट्जरलैंड जे शहर बर्गन स्टाक में जारी गालियुनि में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक नायब अमरीकी सदर जेडेविन सरबराह में सरबराही में स्ट्रोविटकोव ए जर्ड कुशनर मौजूद ईरानी वफद के सरबराही में स्पीकर बाकर कारीबाज सरबराही कर रो है ईरानी पढ़ी वजीराबाद सदाकची ईरानी मरकजी बैंकिंग जो गवर्नर ए बया मौजूद।

ईरान इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे जे बे दौर जी ॻाल्हियुनि में लबनान में जंगबंदी खे मर्कज़ी नुक़्तो क़रार ॾेई छॾियो। ईरानी परडे॒ही वज़ार जे तर्जुमान इस्माइल बाग़ाई चयो आहे त अमरीका लबनान में जंगबंदी यकीनी बणाइण में नाकाम रहियो आहे। असांजी बहारी ऐं ईरानी तेल तां पाबंदी जो सबबु ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा।

शहीद मोतमा बेनज़ीर भुट्टो जो 73 जन्म ॾियारो मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे जनम ॾियारे जे मौके ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ किराए सां मंज़ूर करे वरितो। गढ़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान ख़वानी बि कई वई। कंबर, कंदकोट ऐं ॿियनि शहरनि में केक काटे शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे भेटा पेश कई।

0: पीपीएमपी नईम खरल कैंसर सबब कराची के निजी अस्पताल में आराम करें पो नईम खरल केतरे अर्से का जिगर कैंसर की बीमारी मुबतला हो नईम खरल पीपल्स पार्टी की टिकट तां पंज फेरा
1: चार बजते ही सारे सिस्टम हैंग
2: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज जीएएफएम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज जीएएफएम 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

سب ہیں چپ بولتی ہیں جہاں اے علی تیری تنہائیاں سب ہیں چپ

0: कम से कम है जो फसले कमा।
1: हाय हाय अल्लाह,
2: कम से कम
1: जाते शाहिद में मशहूद में, हाँ वजूद और मौजूद में कम से कम है जो फसले कमा।
0: ए अली तेरी तन्हाइयां, ए अली तेरी तन्हाइयां।
1: लो फकीरों, और वो जो तन्हाई में सरगोशियां करते हैं।
2: पेश कर रहा हूँ ये शेर।

कह रही है ये कुन की सदा के काढ़ लेती है खुद से जहां, काढ़ लेती है, काढ़ लेती है।

0: कि मौला सरकार 23 बरस 3 माह हुजरे में गुशन नशीन बैठे रहे। एक दिन बीवी सरकार के ये जुमला कलेजे को वो करता है, हर जितने भी हक परस्त हैं सच के रास्ते पे चलने वाले लोग, वो मेरा एक शेर कि जिनकी महफिल में मेरे मौला की बातें ना मिले उससे अच्छी मेरे मौला मेरी तन्हाई है। और इश्क हैदर में ये लाजिम है फना हो जाओ, इश्क हैदर में ये लाजिम है फना हो जाओ, इससे कम इश्क नहीं इश्क की रुसवाई है। इससे कम इश्क नहीं इश्क की रुसवाई है। अब यहां पर एक शेर पेश कर रहा हूं जरा आखिर में कि बीवी सरकार कहती है, ए अबू हसन मुझसे अब आपकी ये हालत नहीं देखी जाती, इतना चुप रहते हैं आप, बताइए अबू हसन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अब जिनके दिल दुखे हुए हैं माशरे से, अब जो जानते हैं कि हलाल क्या है हराम क्या है, जो जानते हैं कि हलाल के रास्ते पे चलने पे मसाइब क्या है, जो जानते हैं तन्हाई क्या है, वो इस मिसरे को समझेंगे। अरे अबुल हसन, बीवी कहती है अबुल हसन बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो जवाब सुनेंगे मौला अली का, कहें फातिमा अब कूफे में मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता, कूफे में। अब शेर सुनिएगा,
1: कैसा कोई सलाम कलाम जब नहीं है जवाब सलाम, कैसा कोई सलाम कलाम जब नहीं है जवाब सलाम, उफिये तौकीर इल्म अल्लमा ए अली तेरी तन्हाइयां।
0: और आखिरी शेर
1: के रो रही है जोशों सहर फातिमा तेरी

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: हिसार नूर मेरी
5: याद है, यहाँ बैठे थे और सच्चे भाई ने पढ़ा था।

0: जाऊंगी।
1: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

नथो ठहण चाहे। ईरानी सदर मसूद पजिशान चयो त अमरीका खे इहा गणती आहे त ईरान वटि एटमी हथियार न हुजनि। शहीद सुप्रीम लीडर बि सदाई वाज़े कयो हो त हू एटमी हथियार नथो चाहे। तय थियल मफ़ामती यादाशनामे जूं समूरियूं शिकूं ईरान जे मफ़ाद में आहिनि। कतर में मंझंद ईरान जा 6 अरब डॉलर जा असासा बहाल कया वञनि। इस्लामाबाद मफ़ामती यादाशनामे ते ॿिए मरहले जी ॻाल्हियुनि दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ नायब अमरीकी सदर जे डी विंस विच में मुलाकात। स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्ग स्टाक में मुलाकात दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि मौजूद। अमरीकी नायब सदर जे डी विंस चयो त असां पाकिस्तान सां मोहबत कंदा आहियूं, पाकिस्तान अमन लाइ बहितरीन किरदार अदा कयो आहे। अमरीकी नायब सदर अमरीकी सदर विच में ओभर बाबति ख़ासि नुमाइंदो स्टीव विटकोफ, डोनाल्ड ट्रंप जो नाटी जेड कुशनर बि मौजूद हो।

शहीद मोहतरमा बेनदीर भुट्टो जो 73 जन्म दिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनदीर भुट्टो खे जनम दिहाड़े जे मौके ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ी राय सां मंज़ूर करे वरितो। गढ़ी खुदा बख़्श भुट्टो में शहीद बेनदीर भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान ख़वानी बि कई वई। कंबर कनकोट ऐं ॿियनि शहरनि में केक काटे शहीद बेनदीर भुट्टो खे भेटा पेश कई वई। शहीद बेनदीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दग ॾिना। जुरत ऐं क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खेसि जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमीद जी अलामत तौर यादि करे थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो शहीद मोहतरमा बेनदीर भुट्टो हिकु जमहूरी तरक़ी पसंद ऐं चयन सूबनि जी ज़ंजीर हुई। मज़बूत वफ़ाक़, बाख़्तियार मुल्क ऐं आइन जी बालादस्ती शहीद बीबी जो नज़रियो हो। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण चयो आहे त अमरीका ईरान मुआहिदे में फील्ड मार्शल जो किरदार बहितरीन रहियो। दुनिया में पाकिस्तान तौर सुञातो वञे थो। पाकिस्तान समूरी दुनिया में अमुन आणे रहियो आहे। विच ओभर में अमुन लाइ पाकिस्तान अहम किरदार अदा कयो। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमण चयो त शहीद राणी जी सोच विजन अॼु बि नौजवाननि लाइ मशले राह आहे। शहीद बेनदीर भुट्टो सॼी ज़िंदगी अवाम जो आवाज़ बणजी गुज़ारी। शहीद राणी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणजी सियासी क़यादत जी तारीख़ लिखी। शहीद राणी मुल्क खे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ऐं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम ॾिनो।

पीपीएमपी नईम खरल कैंसर सबब कराची निजी अस्पताल में लड़ानो करे वो नईम खरल केतरी अरसे का जिगर ए कैंसर की बीमारी में मुबतला हो नईम खरल पीपल्स पार्टी के टिकट ता पीए चूंडियो वो सन वेझो कोयले की खाण में बपुरत फौत खाण में लड़ने दौरान ड्रम जो जंजीर टुटी पो हादसे सबब जुम्मन नादर राजर फौत थिया पहुंचल पौधन जा लाज जरूरी कार्रवाई लाइ मकामी अस्पताल मुंतकिल किया वा समारोह वेझो शादी का इनकार से नारी मंगेंदी हथा कुहाड़ियों हणी कतल घोट गुलाम हुसैन खोसो में जवाबदार गुलाम रसूल खोसो पैं मंगेंदे असमा खोसो के कतल कर

लाड़काने में पाणी कोर्ट ऐं औरतुनि जे कतलेआम ऐं ज़मीनुनि ते वालार ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली अवामी तहरीक ऐं सिंधी तहरीक जी सॾ ते कारकुननि जना बाग खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी। अॻवाननि जो चवण आहे त पंजाब जा फ्लड केनाल्स खोले सिंध जे हिसे जो पाणी गैर कानूनी तौर ते रोकियो पियो वञे। सिंध में धाड़ियल राज खे सरकार जी सरपरस्ती हासिल आहे, माण्हू घरनि में महफ़ूज़ न आहिनि।

कंबर में प्रिया कुमारी की आजादी लाइ जसकम जो एहतजाज बारन जंजीर पाए शिरकत कई कारकुनन क्रिकेट ग्राउंड का प्रेस क्लब तई एहतजाजी रैली कढ़ी सरकार पंज साल गुजरण बाद प्रिया कुमारी के बाजियाब न कराए सकी प्रिया की अमन ताहू कदे मासूम की बाजियाब कराने जो अपीलू कर रही है प्रिया कुमारी सिंध की न्याणी है कि जल्द आजाद न कराया गया तो सारी सिंध में एहतजाज कंदासीं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
3: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस्लामाबाद मफामती यादाश्त नामे ते बेमरले जी गालन दौरान वजीर आजम जी ईरान ए अमेरिका जे वफदन सा धारधार मुलाकातूं। स्विट्जरलैंड जे शहर बर्गन स्टॉक में पाकिस्तानी वफद पारा मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर घरू वजीर मोहसिन नकवी भी शरीक। ईरानी वफद में स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची ए बिया भी मौजूद। पाकिस्तानी वफद अमरीकी वफद में गालन की सरबराही कंदड़ नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस, स्टेफ विटकोफ, जेरेड कुशनर ए बेन से मुलाकात कई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो चवण हो तो असा पाकिस्तान से मोहब्बत कंदा आयूं, पाकिस्तान अमुन लाय बेहतरीन किरदार अदा कयो आहे। ईरान एटमी हथियार न ठाहिण वरी मौकिफ ते सयूं करे छॾियूं। ईरानी सदर ईरान एटमी हथियार न ठाहिण वरी मौकिफ ते सयूं करे छॾियूं। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दग ॾिना, जुरत ॾिनी ऐं क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खे जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमेद जी अलामत तौर यादि करे थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु जमहूरी, तरक़ी पसंद ऐं चइनि सूबनि जी ज़ंजीर हुई। मज़बूत वफ़ाक, बाख़्तियार मुल्क ऐं आइन जी बालादस्ती शहीद बीबीअ जो नज़रियो हो। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इना मेमन चयो आहे त अमरीका ईरान मुआदे में फील्ड मार्शल जो किरदार बहितरीन रहियो। दुनिया में पाकिस्तान खे अमुन पसंद मुल्क तौर सुञातो वञे थो। पाकिस्तान समूरी दुनिया में अमुन आणे रहियो आहे। विच ओभर में अमुन लाइ पाकिस्तान अहम किरदार अदा कयो। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमन चयो त शहीद राणे जी सोच ऐं विज़न अॼु बि नौजवाननि लाइ मशाल राह आहे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सॼी ज़िंदगी अवाम जो आवाज़ बणजी गुज़ारी। शहीद राणी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणजी सियासी क़यादत जी तारीख़ लिखी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क खे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ऐं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम ॾिनो।

धारो वेझो शहीद थियल बिन पुलिस अहलकारनि जी जनाज़ नमाज़ टंडो अलिहार में अदा कई वई। शहीद अहलकारनि अकबर मरी ऐं मजीद मरी जी सरकारी एज़ाज़ सां तदफ़ीन सलामी बि पेश। शहीद पुलिस जे वारसनि शहीद अहलकारनि जी शहादत वारे वाके जो ज़िमेवार टंडो अलिहार ऐं ठठे जे एस एस पी खे करार ॾेई छॾियो। वारसनि जो चवणो हो त एस एस पी टंडो अलिहार ॿिन्ही पुलिस अहलकारनि खे ज़िले बदर कयो, जंहिं सबबि हू परेशान हुआ। एस एस पी ठठो अहलकारनि खे अहिड़े हंधि मुक़ररु कयो जिते केर बि वञण लाइ तयार न हो। कंबर ऐं लखी गुलाम शाह में आई बी ए टेस्ट पास उमेदवारनि पारां अफराड नंबरनि ख़िलाफ़ एहतजाज। उमेदवारनि जो चवण हो त इम्तिहान में 40 खां वधीक मार्कूं खणी पास थिया आहियूं, 4 साल खां अफराड न पिया ॾिना वञनि। समूरी सिंध में केतिरे वक़्त खां एहतजाज करे रहिया आहियूं, पर सरकार तदारुक नाहे कयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GAFM 90.4।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: लिथुआनियन वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बे इन वक्त मौजूद हैं। ईरान ऐं अमेरिका विच में हिन वक़्तु स्विट्ज़रलैंड में ॻाल्हियूं जारी आहिनि। बिर्गन स्टॉक मां मूंखे आगाह कयो पिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर जी ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे कुझु देरि। बिर्गन स्टॉक मां मूंखे आगाह कयो पिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं अमरीकी नायब सदर जी ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे।

0: अमरीकी नायब सदर जे डी वेन्स की गाल्ह बोलबी थी है। वजीर आजम जो चवण हो तो ईरान ए अमरीका की गाल में पाकिस्तान ट्रैकड़ी कंदड़ तौर शरीक है। वजीर आजम शाहबाज शरीफ अधिक चो है तो असा सब गर्जी दुनिया में अमुन कायम कर सकूं था। जे डी वेन्स जो चवण हो तो ईरान ए अमरीका की गाल्ह में वजीर आजम ए फील्ड मार्शल जो अहम किरदार है। अमरीकी नायब सदर जो वधिक चवण हो तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जबरदस्त मानू है। स्विट्जरलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में इन वक्त ईरान ए अमरीका विच में इस्लामाबाद एमओयू तहत टेक्निकल सतह जो गाल बर्गन मामा क्या आगा क्यों पे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए अमरीकी नायब सदर जे डी वेन्स गाल बोल भी कई है। जे डी वेन्स पारा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाखाण कई हुई। अमरीकी नायब सदर जो चवण है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सपेसालार है। जे डी वेन्स वधिक चो तो ईरान।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: FM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

नदग जो ओठी तरस सजाए वगुनी गर जो ओठी तरस सजाए वगुनी गर जो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो ओठी पुत्र अहवाल तदस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठी।

हर हर जो कोठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांज नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए चयो साईं सुगरा नाम अथम अबो पाक हुसैन इमाम अथम चयो साईं।

मुनवर जो ओठी तरस सजाए भगोनी घर जो ओठी तरस सजाए भगोनी घर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बचड़िया जान जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार थी रोन लगो लफ्ज़ बचड़िया जान।

कयूं हेडा कशाला कंज करे जग खलको खुदा वंद जन जे करे कयूं हेडा

आहे सरजो ओठी तरस तड्याए वगोनी गरजो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड्याए ओठी तरस तड्याए वगोनी गरजो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड्याए।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौत पर क्यादत सबब गालियों मुमकिन थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गालिन लाए अहम किरदार अदा किया।

ईरान एटमी हथियार न ठाहिण वारी मुल्क फतेह सयूं करे चुको आहे। ईरानी सदर मसूद पशिकियान जो चवण हो त ईरान सदाई वाज़े कयो त हू एटमी हथियार नथो ठाहिण चाहे। ईरानी सदर मसूद पशिकियान चयो त अमरीका खे इहा गणती आहे त ईरान वटि एटमी हथियार न हुजनि। शहीद सुप्रीम लीडर बि सदाई वाज़े कयो हो त हू एटमी हथियार नथो चाहे। तय थियल मफ़ामती यादाश्त नामे जूं समूरियूं शिकूं ईरान जे मफ़ाद में आहिनि। कतर में मंजमंद ईरान जा $6 अरब जा असासा बहाल कया वञनि। ईरान इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे जी ॿिए दौर जी ॻाल्हियुनि में लबनान में जंगबंदीअ खे मर्कज़ी नुक़्तो करार ॾेई छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जमान

शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुन लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दग डि॒ना, जुरत डि॒नी ऐं क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खेसि जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमेद जी अलामत तौरु यादि करे थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु जमहूरी, तरक़ी पसंद ऐं चइनि सूबनि जी ज़ंजीर हुई। मज़बूत वफ़ाक, बाख़्तियार मुल्क ऐं आइन जी बालादस्ती शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो नज़रियो हो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त अमरीका ईरान मुआदे में फील्ड मार्शल जो किरदार बहितरीन रहियो। दुनिया में पाकिस्तान खे अमुन पसंद मुल्क तौरु सुञातो वञे थो। पाकिस्तान समूरी दुनिया में अमुन आणे रहियो आहे। विचोभर में अमुन लाइ पाकिस्तान अहम किरदार अदा कयो। सिंध असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमन जो चवणु हो त शहीद राणे जी सोच ऐं विज़न अॼु बि नौजवाननि लाइ मशल राह आहे। बेनज़ीर भुट्टो सॼी ज़िंदगी अवाम जो आवाज़ बणिजी गुज़ारी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणिजी सियासी क़यादत जी तारीख़ लिखी। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क खे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ऐं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम ॾिनो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 9।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलामुअलैकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सेवण जो शहबाज एयरपोर्ट 30 सालन खां गैर फाल बनियल बूबक भरसां कायम शहबाज एयरपोर्ट अख्तियारिन खां विसरी वयो हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी सारा पानी बिजली ए रोड वड़ा मसला करार अपोजिशन जी तनकीद गंबट में एचआईवी ते कंट्रोल न थी सक्यो वधीक एक बार फोत अंग वधी अठ थी वयो मेडिकल दाखिलाउन के लिए एमडीकेट टेस्ट 16 अगस्त ते वठण जो ऐलान महंगाई जो तूफान पटाटन टमाटन मुर्गी खीर दही सुधो 25 जरूरी शयन जा अघ वधी वया स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा।

एम क्यू एम जे डॉक्टर फौजिया हमीद चयो त कराचीअ में सभु कुझु ठीकु नाहे, माण्हू पाणीअ जे लाइ भॼी रहिया आहिनि, शहर में पाणी बिजली या गैस नाहे, माण्हू मातम करण बदिरां पाणी जे टैंकरनि पुठियां भॼी रहिया आहिनि, बजट में को बि अवामी भलाई जो प्रोग्राम नाहे। एम क्यू एम मेंबर एजाज़ुल हक चयो त हीउ हिकु गैर जमहूरी बजट आहे जंहिंखे असां रद्द करियूं था। भूबक भरिसां क़ाइम शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो, 30 सालनि खां गैर फ़आल बणियल रहियो। 1993 में पीपी दौर में उन वक़्त जे वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह जे कोशिशुनि सां भूबक वटि एयरपोर्ट ठाहियो वियो हो। एयरपोर्ट मुख़्तसर वक़्तु ऑपरेशन रहण खां पोइ लाॻीतो बंदि आहे। गैर फ़आल खे 3 ॾहाका गुज़री विया, पर हिन वक़्त ताईं एयरपोर्ट बंदि पियल आहे। सार संभाल न लहण सबबि एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकमल तौर तबाह थी वियो आहे। कैमरा, लाउंज हॉल, वेटिंग एरिया, ऑफिसुनि जूं इमारतूं ज़बून हाल थी वियूं आहिनि। 2010 ऐं 2022 जे बोडुनि में एयरपोर्ट ॿुॾल रहियो, जंहिं करे काफ़ी सामान लुढ़ी वियो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाइ लॻल लखे रुपियनि जा सोलर प्लेटूं पिण चोर लाहे विया, जंहिं करे एयरपोर्ट ते मुकमल ऊंदाही छायल आहे। गंबट ऐं आसपास जे इलाइक़नि में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो। गंबट जे कचे जे ॻोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो। नींगर जे घर में कोराम गर्भातियुनि खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती नींगर जे वारसनि ॿुधायो त नींगर मोहम्मद ताहिर खे बुखार थियो हो, जंहिंखे इलाज जे लाइ गिम्स अस्पताल में दाखिल करायो वियो हो, जिथे नींगर जी HIV पॉज़िटिव आई हुई, जंहिं बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हो। जंहिंजे लाड़काणे जे अस्पताल में इलाज हलंदड़ हो त हू फोत थी वियो आहे। हुन वक़्तु ताईं HIV में मुबतला गंबट में फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो आहे ऐं 4 बारड़ा सिटी अस्पताल जे HIV वार्ड में दाख़िल आहिनि, जिन जो इलाज पिण हलंदड़ आहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD KIT 2026 जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। PMDC मूजिब MBBS ऐं BDS प्रोग्रामनि में दाख़िला लाइ MD KIT जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। MD KIT 2026 जी दाख़िला टेस्ट हलंदड़ साल 16 अगस्त ते थींदी। MD KIT आचर 16 अगस्त ते सुबुह 10 वॻे सॼे मुल्क में हिक ई वक़्तु वरितो वेंदो। पंजाब में टेस्ट कराइण जी ज़िमेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया खे ॾिनी वई आहे। रियाज़ में मौजूदु उमेदवारनि जे लाइ बि टेस्ट जी ज़िमेवारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खे सौंपी वई आहे। उमेदवारनि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 खां शुरू थींदी। आम फीस सां रजिस्ट्रेशन जी आख़िरी तारीख़ 8 जुलाई 2026 मुक़रर कई वई आहे। देर सां रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 ताईं कराए सघिबी। पाकिस्तान अंदर क़ाइम टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुक़रर कई वई आहे। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया हूंदी। बैन अलाक़वामी टेस्ट सेंटरनि जे लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुक़रर कई वई आहे, जॾहिं त देर सां रजिस्ट्रेशन जी फीस 55,000 रुपया हूंदी। सिंध में हफ़्तेवार महांगाई 0.76% वधी वई, जंहिं खां पोइ महांगाई जी मजमूई सालियानी शरह 15.28% थी वई आहे। शुमारियात खाते तरफ़ां महांगाई बाबति जारी कयल हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिब हिकु हफ़्ते दौरान 25 ज़रूरी शयुनि जी क़ीमतुनि में वाधि रिकॉर्ड कई वई। रिपोर्ट मूजिब हफ़्ते दौरान 11 शयूं सस्तियूं थियूं ऐं 15 जा अघ बरक़रार रहिया, जॾहिं त हिकु हफ़्ते अंदरि टमाटा 16.65% महांगा थिया, पटाटा 6.82% महांगा थिया, कुकड़ 5.60%, वॉशिंग सोप जी क़ीमत में 1.16% वाधि थी, खीर, ॾही, बाकरे गोश्त ऐं आनंद समेत ॿियनि शयुनि जी क़ीमतुनि में बि वाधि रिकॉर्ड कई वई, जॾहिं त LPG जी क़ीमत 0.51% वधी। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हिकु हफ़्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया, थूम 1.28% सस्ता थिया, उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 0.52% घटाई थी, जॾहिं त दालनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत में हितां तकरार शुरू थी वियो आहे। डिवीज़न 8 अफ़सरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां अफ़सर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस अफ़सरनि वफ़ाकी हवाले करण खां जवाब ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 अफ़सरनि ख़िलाफ़ सख़्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकम जारी करे छॾिया।
उन्हनि आफ़ीसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद 19वें ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज़ ऐं ॿिया शामिल, काशिफ आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ुर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 के लिए 3562 अरब रुपयन का वधिक जी बजट पेश कर छी है, जैमें तालीम, सेहत, बल्दियाती खिदमतुन समाजी तहफुज के शोबन के खास तरजीह दिनी वही है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह पारा सूबाई असेंबली में पेश कल बजट में सरकारी मुलाजमन रिटायर्ड मुलाजमन लाए पघार पेंशन में 7% वाध जो पिण ऐलान किया वो। बजट दस्तावेज मूजिब सूबे की आमदनी जो सब का वो जरियो वफा का मिलंद रकमू रहंद जिन जो काथो 2263 अरब रुपये का लगाया वो है, जो मजमू आमदनी जो तकरीबन बांगे टे हिस्सों बणजे तो। उन सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, सरमाएदारी ओगाड़ियों 88.34 अरब रुपया, वफाकी ग्रांट्स 64.33 अरब रुपया रखा वह। खर्चन के हवाले से बजट जो वो हिस्सो पघारों पेंशन से खर्च किया वो। दस्तावेजन मुताबिक मजमू बजट जो 50% हिस्सों पघारों पेंशन लाए मुख्तस वो है, जडे त 38% ग्रांट्स सब्सिडीज, 8% ऑपरेशन मेंटेनेंस बाकी हिस्सों कर्जन की अदायगी मरम्मत लाए रखो वो है। तरक्याती मनसूबन बाबत हुकूमत ईंदड़ माली साल लाए 720.38 अरब रुपये जो तरक्याती बजट तजवीज़ किया है, जो गुजरियल साल के 1018 अरब रुपये के भेट में 29% घट है, जडे त परदेही सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाए 256.05 अरब रुपया मुख्तस किया वह। तालीम के बजट में सब का अहमियत दिनी वही है, जै लाए 620 अरब रुपया मुख्तस किया वह। स्कूलन के मखसूस बजट में इजाफो कर उनके 22.64 अरब रुपये तक पहुंचाया वो है, जडे त यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स में भी 10% वाध कई वही है। सेहत के शोबे के लिए 393.16 अरब रुपया रखा वह, जिन में 148.17 अरब रुपया वडिन अस्पतालों सेहत के मरकजन के ग्रांट्स तौर फराहम किया वा। बल्दियाती खिदमतुन के लिए 306 अरब रुपया, अमन अमान के लिए 222.30 अरब रुपया, ज़रात खुराक लाए 61.90 अरब रुपया, समाजी खिदमतुन के लिए 57.90 अरब रुपये का मुख्तस किया वह। गरीब कमजोर तबके की मदद के लिए हुकूमत नौ फलाही मनसूबन जो पिण ऐलान किया है, बेनज़ीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनज़ीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम नंढन कारोबारन जे मदद के लिए 80 रुपया रखा वह। स्पेशल मानून के लिए मददगार औजारन, लेंच सपोर्ट गोगल ग्लासेस की फराहमी के लिए पिण 1.1 अरब रुपया मुख्तस किया वह। बे पास बजट इजलास दौरान अपोजिशन जमायत सख्त एहतजाज किया, एमक्यूएम पाकिस्तान बजट तकरीर जो बायकाट किया, जडे अपोजिशन अगवान अली खुर्शीदी बजट से एतराज कन्दे अपोजिशन के एतमाद भी न वरतो वो है, जमहूरियत की रवायत की पासदारी न थियण सबब एहतजाज जारी रहा। इन बजट में तालीम, सेहत समाजी तहफुज के तरजीह दियण से अवामी भलाई से ध्यान दिनों वो है, पर तरक्याती बजट में घटताई मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबन से असर विझी सके थी। हुकूमत लाए वो चैलेंज हों मुख्तस कल फंडन के शफाफ नमूने इस्तेमाल कदे अवाम तई हकीकी फायदा पहुंचाया वजन।

0: हफ्ते भर की खबरें।
1: सूबाई टैक्स आमदनी 7,28,38 करोड़ रुपए जो तरक्याती बजट तजवीज़ किया है, जो गुजरियल साल जी
2: सुबह हो या शाम
3: सही।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFH नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4
1: उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस तड़ियाई उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस तड़ियाई तुझे उठड़े अदान कर खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खनी तुझे उठड़े अदान कर खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खनी शल तोखे बिडे रब उम्र घनी जोरो जल्द पहुंचाए जाए दिल पर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए वन्यन पहुंचंदे जाते वन्यनों थई मुझी कैल सदा के मन्यनों थई वन्यन पहुंचंदे जाते

हर हर जो कोठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए चयो साईं सुगरा नाम अथम अबो पाक हुसैन इमाम अथम चयो साईं।

वर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बचड़िया जाऊं जद बुधन लगो ओठी पे अख्तियार की रोन लगो लफ्ज़ बचड़िया जाऊं जद बुधन लगो ओठी पे अख्तियार की रोन लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो मां गुलाम हुसैन जे दर जो ओठी तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए कयों हेडा कशाला कन जे करे जग खलको खुदा वंद जन जे करे कयों हेडा कशाला।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा सेवण जो शहबाज़ एयरपोर्ट 30 सालन खां गैर फ़ाल बणियल बूबक भरसां कायम शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारिन खां विसरी वियो। हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी सारा पाणी बिजली ऐं रोड वॾा मसला करार अपोज़िशन जी तनक़ीद। गंबट में एच आई वी ते कंट्रोल न थी सघियो वधीक हिक बार फोत अंग वधी अठ थी वियो। मेडिकल दाखिलाउनि जे लाइ एम डी केट टेस्ट 16 अगस्त ते वठण जो ऐलान। महंगाई जो तूफान पटाटन टमाटन मुर्गी खीर ॾही सुधो 25 ज़रूरी शयुनि जा अघ वधी विया। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा सिंध बजट साल 2026-27 तालीम ऐं सिहत खे तरजीह तरक़ियाती बजट में घटिताई।

सिंध जे नए माली साल वारे बजट ते सिंध असेंबली में बहस काल बे ॾींहं बि जारी रहियो। हुकूमती ऐं मुखालिफ़ धुर मेंबरनि पारां हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि ऐं तनक़ीदुनि वारो सिलसिलो काल बि जारी रहियो। हुकूमती मेंबरनि सिंध जे वॾे वज़ीर खे मुश्किल मुआशी सूरत हाल में मुतवाज़िन बजट पेश करण ते मुबारकबाद ॾिनी, जॾहिं त मुख़ालिफ़ धुर जे मेंबरनि चयो त बजट जी तयारी दौरान उन्हनि खे एतमाद बि न वरितो वियो ऐं उहे उन खे रदि कनि था। पीपी मेंबर मारवी राष्ट्रीय चयो त मुख़ालिफ़ धुर वॾे वज़ीर जे तकरीर खे ॿुधण खां सवाइ बाइकाट करे पंहिंजे माण्हुनि सां ज़्यादती कई आहे। सिंध हुकूमत सूबे जे तरक़ीअ जे लाइ बहितरीन ख़िदमतूं सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि। सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल बहितरीन आहे, पर जेको बि मंशियात जो वापार में मुलविस आहे हुन खे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। एम क्यू एम जे अब्दुल बासत चयो त सिंध में करप्शन उरूज ते आहे, पोइ एंटी करप्शन इदारो करप्शन खे कीअं रोके सघंदो। एंटी करप्शन जी पंहिंजी इमारत में करप्शन थी, एम क्यू उरूज ते आहे, पोइ एंटी करप्शन इदारो करप्शन खे कीअं रोके सघंदो। एंटी करप्शन जी पंहिंजी इमारत में करप्शन थी।

पी दौर में उन वक्त के वजीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह के कोशिशों से बूबक वट एयरपोर्ट ठाया हुए हो। एयरपोर्ट मुख्तसर वक्त ऑपरेशन रहने का लागीतो बंद है। गैरफाल के टे दहाका गुजरी वह पर इन वक्त तीन एयरपोर्ट बंद पियल है। सार संभाल न लहण सबब एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर तबाह थी वो है। कैमरा लॉन्च हॉल वेटिंग एरिया ऑफिसन जो इमारतू जबून हाल थी वही 2010-2022 के बोडुन में एयरपोर्ट बुडल रो जैं करे काफी सामान लुढ़ी वो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाए लगल लखे रुपयन जा सोलर प्लेटू पिण चोर लाहे व्या जैं करे एयरपोर्ट ते मुकम्मल ऊंदा ही छायल है। गंबट ऐं आसपास जे इलाइकन में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो। गंबट जे कचे जे गोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतिन जो अंग वधी अठ थी वियो। निंगर जे घर में कोराम गर्भातिन खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती निंगर जे वारसन बुधायो तो निंगर मोहम्मद ताहिर के बुखार थियो हो जैंखे इलाज जे लाइ गिम्स अस्पताल में दाखिल करायो वियो हो जिथे निंगर जी HIV पॉजिटिव आई हुई। जैं बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हो जैंजे लाड़काणे अस्पताल में इलाज हलंदड़ तो हू फोत थी वियो आहे। हुन वक्त ताईं HIV में मुब्तला गंबट में फोतुन जो अंग वधी अठ थी वियो आहे ऐं चार बारड़ा सिटी अस्पताल जे HIV वार्ड में दाखिल आहिनि जिन जो इलाज पिण हलंदड़ आहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD केट 2026 जो शेड्यूल जारी करे छो। PMDC मूजिब MBBS BDS प्रोग्राम में दाखिला लाए MD केट जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। MD केट 2026 जी दाखिला टेस्ट हलंदड़ साल 16 अगस्त ते थींदी। MD केट आचर 16 अगस्त ते सुबुह 10 वगे सजे मुल्क में एक ही वक्त वरतो वेंदो। पंजाब में टेस्ट कराने की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया के डिनी वही है। रियाज में मौजूद उम्मीदवार के लिए भी टेस्ट की जिम्मेवारी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सौंपी वही है। उम्मीदवार की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 का शुरू थी। आम फीस से रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2026 मुकर्र कई वही है। देर से रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 तक कराए सकबी। पाकिस्तान अंदर कायम टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुकर्र कई वही है। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया होंदी। बैन अलाक़वामी टेस्ट सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुकर्र कई वही है जडे त देर से रजिस्ट्रेशन की फीस 55,000 रुपया होंदी। सिंध में हफ्तेवार महंगाई 0.76% वधी वही जैंखा पोए महंगाई की मजमूई सालियानी शरह 15.28% थी वही है। शुमारियात खाते तरफा महंगाई बाबत जारी कल हफ्तेवार रिपोर्ट मूजिब एक हफ्ते दौरान 25 जरूरी शयन की कीमत में वाद रिकॉर्ड कई वही। रिपोर्ट मूजिब हफ्ते दौरान 11 शयू सस्तू थी 15 जहा अघ बरकरार रहा जडे त एक हफ्ते अंदर टमाटा 16.65% महंगा थिया। पटाटा 6.82% महंगा थिया। कुकड़ 5.60%। वॉशिंग सोप की कीमत में 1.16% वाद थी। खीर दही बाकरे गोश्त आनंद समेत बेन शयन की कीमतों में भी वाद रिकॉर्ड कई वही जडे त LPG की कीमत 0.51% वधी। रिपोर्ट में जानायो वियो आहे त एक हफ्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया। थूम 2.51 ऐं केला 1.28% सस्ता थिया। उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी कीमत में 0.52% घटाई थी जॾहिं त दालनि ऐं अटे जी कीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफाक ऐं सिंध हुकूमत में 8 पुलिस आफिसरनि जे मुक़ररी तां तकरार शुरू थी वियो आहे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़रर 8 पुलिस आफिसरनि जूं ख़िदमतूं वफाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफिसरनि जूं ख़िदमतूं वफाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां आफिसर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस आफिसरनि वफ़ाक़ी हवाले करण खां जवाब ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 आफिसरनि ख़िलाफ़ सख़्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफिसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी शबीर सेठार शमील रियाज ऐं ॿिया शामिल काशिफ आफ़ताब अहमद कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन हफीज़ुर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 जे लाइ 3562 अरब रुपयनि खां वधीक जी बजट पेश करे छॾी आहे, जंहिंमें तालीम, सिहत, बलदियाती ख़िदमतुनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबनि खे ख़ासि तरजीह ॾिनी वई आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां सूबाई असेंबली में पेश कयल बजट में सरकारी मुलाज़मनि ऐं रिटायर्ड मुलाज़मनि लाइ पघार ऐं पेंशन में 7% वाध जो पिणु ऐलान कयो वियो। बजट दस्तावेज़ मूजिब सूबे जी आमदनी जो सभ खां वॾो ज़रियो वफ़ाक़ खां मिलंदड़ रक़मूं रहंदियूं, जिन जो काथो 2263 अरब रुपयनि खां वधीक लॻायो वियो आहे, जेको मजमूई आमदनीअ जो तक़रीबन 2/3 हिसो बणिजे थो। उन खां सवाइ सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, सरमाएदारी ओगाड़ियूं 68.34 अरब रुपया ऐं वफ़ाक़ी ग्रांट्स 64.33 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। खर्चनि जे हवाले सां बजट जो वॾो हिसो पघारुनि ऐं पेंशनुनि ते ख़र्च कयो वेंदो। दस्तावेज़नि मुताबिक़ मजमूई बजट जो 50% हिसो पघारुनि ऐं पेंशनुनि लाइ मुख़्तस कयो वियो आहे, जॾहिं त 38% ग्रांट्स ऐं सब्सिडीज़, 8% ऑपरेशन ऐं मेंटेनेंस ऐं बाक़ी हिसो कर्ज़नि जी अदायगी ऐं मरम्मत लाइ रखियो वियो आहे। तरक़ियाती मनसूबनि बाबति हुकूमत ईंदड़ माली साल लाइ 720.38 अरब रुपयनि जो तरक़ियाती बजट तजवीज़ कयो आहे, जेको गुज़िरियल साल जे 1018 अरब रुपयनि जे भेट में 29% घटि आहे, जॾहिं त परडे॒ही सहकार सां हलंदड़ मनसूबनि लाइ 256.05 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। तालीम खे बजट में सभ खां वधीक अहमियत ॾिनी वई आहे, जंहिं लाइ 620 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। स्कूलनि जे मखसूस बजट में इज़ाफ़ो करे उन खे 22.64 अरब रुपयनि ताईं पहुचायो वियो आहे, जॾहिं त यूनिवर्सिटियुनि जी ग्रांट्स में बि 10% वाध कई वई आहे। सिहत जे शोबे जे लाइ 393.16 अरब रुपया रखिया विया, जिन मां 148.17 अरब रुपया वॾनि अस्पतालुनि ऐं सिहत जे मर्कज़नि खे ग्रांट्स तौर फराहम कया वेंदा। बलदियाती ख़िदमतुनि जे लाइ 306 अरब रुपया, अमन अमान जे लाइ 222.30 अरब रुपया, ज़रात ऐं ख़ुराक लाइ 61.90 अरब रुपया ऐं समाजी ख़िदमतुनि जे लाइ 57.90 अरब रुपयनि खां वधीक मुख़्तस कया विया आहिनि। ग़रीब ऐं कमज़ोर तबिके जी मदद जे लाइ हुकूमत नओं फलाही मनसूबनि जो पिणु ऐलान कयो आहे। बेनज़ीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनज़ीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम ऐं नंढनि कारोबारनि जे मदद जे लाइ 80 रुपया रखिया विया आहिनि। स्पेशल माण्हुनि जे लाइ मददगार औज़ारनि, लेंस सपोर्ट ऐं गोगल ग्लासेस जी फराहमी जे लाइ पिण 1.1 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। ॿिए पासे बजट इजलास दौरान अपोज़ीशन जमायत सख़्त एहतजाज कयो। MQA पाकिस्तान बजट तक़रीर जो बाइकाट कयो, जॾहिं त अपोज़ीशन अॻवान अली खुर्शीदीअ बजट ते एतिराज़ कंदे चयो त अपोज़ीशन खे एतमाद बि न वरितो वियो आहे ऐं जमहूरियत जी रवायत जी पासदारी न थियण सबबि احتجاج جاری رہندا۔ ہن بجٹ میں تعلیم، صحت ایں سماجی تحفظ کے ترجیح دین سان عوامی بھلائی تے دھیان دینو ویو ہے، پر ترقیاتی بجٹ میں گھٹتائی مستقبل جے ترقیاتی منصوبن تے اثر وجی سکے تھی۔ حکومت لائے وڈو چیلنج ہوندو تے مختص کیل فنڈن کے شفاف نمونے استعمال کندے عوام تائیں حقیقی فائدہ پہنچایا وجن۔

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: वगुनी गरजो ओठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाई ओठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाई तुझे उठड़े अदान कर खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खनी तुझे उठड़े अदान कर खैर धनी ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खनी शल तोखे बिडे रब उम्र घनी जोरो जल्द पहुंचाए जाए दिल पर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए वन पहुंचंदे जाते वनणो थई मुझी कैल सदा खे मनणो थई वन पहुंचंदे जा।

बाबा करे करी कान थी बस।

हर हर जो कोठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांज नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए चयो साइन सुगर

वर जो ओठी तरस सजाए भगोनी घर जो ओठी तरस सजाए भगोनी घर जो पांजे नंढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बचड़िया जाऊं जद बुधण लगो ओठी पे अख्तियार की रोण लगो लफ्ज़ बचड़िया जाऊं जद बुधण लगो ओठी पे अख्तियार की रोण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो मां गुलाम हुसैन जे दर जो ओठी तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए कयो हेडा कश

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो जी।